नमस्कार, 4EBFM 98.1 के साप्ताहिक भारतीय प्रसारण नमस्ते वर्ल्ड में आप सभी श्रोताओं का हार्दिक स्वागत करती हूं। मैं आपकी आरजे सीमा श्री कुमार। आशा है आप सभी राजी खुशी से होंगे। बच्चों की टर्म 3 की छुट्टियां खत्म हो चुकी हैं, बच्चे और टीचर्स फिर से बैक टू स्कूल हो चुके हैं, एक और टर्म, फिर गर्मियों की लंबी छुट्टियां। आप में से कई लोग छुट्टियों के प्लान्स बना चुके होंगे। आशा है सबके प्लान्स मंगलमयी हो। जैसा कि आप जानते होंगे कि अभी हमारा नवरात्रि का समय है, आप सब पर देवी की कृपा रहे, यही हमारी प्रार्थना है। चलिए अब देवी भक्ति गीत सुनते हैं और आज का प्रसारण शुरू करते हैं।

आज के सुविचार में चलिए मैं आपको गौर गोपालदास जी की सुनाई एक कथा सुनाती हूँ। एक व्यक्ति को अपना घर बदलना था। उसे पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जाना था। उसके रास्ते में एक नदी आती है और उसे तैरना नहीं आता है। तब वह आसपास की बांस की लकड़ियों को इकट्ठा कर बेलों से बांधकर एक नाव बनाता है जो उसे नदी पार कराने में मदद करती है। जब वह उस पार पहुंचा तो अपने परिश्रम पर उसे नाज हुआ। उसने सोचा, वाह भाई, मैंने यह राफ्ट बनाया और इसने नदी पार करने में मेरी मदद की। शायद यह मुझे भविष्य में भी काम आए, तो मैं इसे अपने साथ ले जाता हूँ। उस राफ्ट को बैकपैक की तरह अपने पीछे बांधकर वह चलने लगा। उसे एक जंगल से गुजरना था तो यह राफ्ट का बैकपैक हर पेड़ और झाड़ी में अटक जाता था। अब उसके पास केवल दो रास्ते थे, या तो राफ्ट को वहीं छोड़ दो और आगे बढ़ो, या फिर राफ्ट के साथ वहीं रुक जाओ। ऐसी ही अवस्था हमारे जीवन में भी आती है। जब एक वस्तु ने अपना काम कर दिया है तो उसे छोड़ देना ही बुद्धिमानी है, क्योंकि अपना काम खत्म करने के बाद उस चीज का महत्व नहीं रहता, वह फिर बोझ बन जाता है। अपने प्रेशियस मेंटल स्पेस से अनावश्यक चीजों को निकाल दो। चलिए सुनते हैं यह गीत काई पोछे फिल्म से। रंगे पा।

जिन श्रोताओं ने देर से ट्यून इन किया है उन सभी का हार्दिक स्वागत है 4EB FM 98.1 के भारतीय साप्ताहिक प्रसारण नमस्ते वर्ल्ड में। और आज मैं आपके साथ हूं आपकी आरजे सीमा श्री कुमार। आप सभी को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। नवरात्रि जो नौ रात्रियों का पर्व है, इसमें आदि पराशक्ति माँ दुर्गा के नौ रूपों की पूजा होती है। हमारे सभी त्योहारों की तरह यह भी बुराई पर अच्छाई की जीत ही सिखाती है। ईस्टर्न और नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में दुर्गा पूजा के रूप में यह धूमधाम से मनाया जाता है, जिसमें दुर्गा देवी का महिषासुर पर विजय को मनाया जाता है। गुजरात में इस दौरान गरबा नृत्य का आयोजन होता है और बड़े और छोटे मैदानों में जहां कोई भी पार्टिसिपेट कर सकता है। चलिए नवरात्रि की और जानकारियां सुनने से पहले सुनिए यह गीत, प्रसिद्ध गरबा डांस वाला गीत फिल्म हम दिल दे चुके सनम से।

इस प्यारे गीत से पहले मैं आपको नवरात्रि की बातें बता रही थी। नवरात्रि के दौरान 9 दिनों में देवी दुर्गा के 9 रूपों की पूजा होती है। स्टेजेस सजाए जाते हैं, देवी की महत्ता के किस्सों के गीत और नृत्य होते हैं, जाप होते हैं, पंडाल को सजाकर कॉम्पिटिशन्स भी होते हैं, व्रत रखे जाते हैं, 10वें दिन विजयदशमी मनाया जाता है, देवी की मूर्तियों को नदी या समुद्र में प्रवाहित किया जाता है, फिर इसके 20 दिन बाद आती है दिवाली। हिंदू ग्रंथों के अनुसार साल में 4 बार नवरात्रि का समय आता है, ग्रहों और चांद के स्थानों के हिसाब से। इनके सबसे प्रसिद्ध शरद नवरात्रि है, जो कि सितंबर अक्टूबर के समय में होती है। कभी कभी नवरात्रि एक दिन ज्यादा या एक दिन कम भी हो सकती है, क्योंकि यह हिंदू लूनी सोलर कैलेंडर पर आधारित है, जिसमें सूर्य और चंद्रमा के स्थान, लीप ईयर का आना, यह सब प्रभावित करता है। चलिए यह गीत सुनते हैं फिल्म गलियों की रासलीला रामलीला से, और फिर नवरात्रि की और बातें करें।

चलिए मैं अब आपको बताती हूँ कि हमारे केरल में नवरात्रि कैसे मनाई जाती है। नौ रात्रियों में देवी के नौ रूपों की आराधना होती है। हर दिन एक रंग होता है तो सभी उस रंग के वस्त्र पहनते हैं। देवी और अन्य भगवानों के भजन गाए जाते हैं। हर रात्रि के प्रसाद भी उस रात्रि के आधार पर होते हैं। केरल में खासकर अष्टमी, नवमी और दशमी का महत्व बहुत अधिक है। दुर्गाष्टमी के दिन किताबों, औजारों आदि को देवी को समर्पित किया जाता है, अपने अपने घरों में, मंदिरों में या फिर बड़े मंदिरों में। इसे आयुध पूजा के नाम से जाना जाता है। दुर्गाष्टमी और महानवमी के दिनों में पूरी तरह से दुर्गा और सरस्वती माता की पूजा होती है। फिर दशमी के दिन किताबों और औजारों को पूजा के बाद वापस लिया जाता है। इस दिन छोटे बच्चे जो पहली बार लिखना शुरू करते हैं, उन्हें अपने पिता की गोद में बिठाकर थाली में चावल के अंदर मलयालम में हरि श्री गणपतये नमः लिखाया जाता है और इस तरह उनका विद्यारंभ किया जाता है। चलिए अब एक मलयालम गीत सुनते हैं।

आप सुन रहे हैं 4EB FM 98.1 का साप्ताहिक भारतीय प्रसारण नमस्ते वर्ल्ड, आपकी आरजे सीमा श्री कुमार के साथ। नवरात्रि के दौरान देवी मां के 9 रूपों की पूजा होती है। पहले दिन देवी शैलपुत्री की पूजा की जाती है, जो कि पर्वत की पुत्री हैं, यानी देवी पार्वती का एक रूप है। वे नंदी पर सवार, एक हाथ में त्रिशूल और एक हाथ में कमल का फूल होता है देवी शैलपुत्री का रूप। उस दिन का रंग पीला माना जाता है। इसे एक्शन और विगर का रंग माना जाता है। मां शैलपुत्री का निवास काशी नगरी के वाराणसी में माना जाता है। वहां एक प्राचीन मंदिर भी है। मान्यता यह है कि जो इस मंदिर में मां शैलपुत्री का दर्शन करते हैं, उनकी सभी मुरादें पूरी होती है। प्रतिपदा के दिन जो भक्त उनका दर्शन करते हैं, उनके वैवाहिक कष्ट सब दूर हो जाते हैं। चलिए अभी यह गीत सुनते हैं फिल्म गंगूबाई काठियावाड़ी का, फिर नवरात्रि की और बातें करेंगे।

प्रतिपदा के बाद द्वितीया में होती है देवी ब्रह्मचारिणी की पूजा। यह देवी पार्वती का अविवाहित रूप है। देवी ब्रह्मचारिणी की पूजा की जाती है मोक्ष और शांति व ऐश्वर्य की प्राप्ति के लिए। देवी ब्रह्मचारिणी के नंगे पैर और हाथों में रुद्राक्ष की जपमाला और पानी का कमंडल, इस तरह का उनका सादगी से भरा रूप है। इस दिन का रंग सफेद है। तृतीया के दिन देवी चंद्रघंटा की पूजा होती है। शिवजी के साथ विवाह के बाद देवी पार्वती ने अर्धचंद्र को अपने माथे पर लगाया। देवी पार्वती सौंदर्य और साहस का प्रतीक है। ग्रे रंग इस दिन का रंग है। चतुर्थी के दिन देवी कुष्मांडा को पूजा जाता है, जो कि खुशहाली और हरियाली की प्रतीक है। आठ भुजाओं वाली देवी शेर पर विराजती हैं। इस वर्ष चतुर्थी दो दिनों में हो रहा है। चलिए अब सुनते हैं लव यात्री फिल्म का यह गरबा गीत।

पांचवी रात को देवी स्कंद माता को पूजा जाता है। जब बच्चा खतरे में हो तो माँ की शक्ति को दर्शाती है देवी स्कंद माता। चार भुजाओं वाली देवी माँ एक बच्चे को उठाए हुए खूंखार शेर पर सवार दिखती हैं। फिर आती है देवी कात्यायनी को पूजने की रात। लाल रंग वाला यह दिन धैर्य और शक्ति को दर्शाता है। ईस्टर्न इंडिया में इस दिन के साथ शारदीय दुर्गा पूजा शुरू होती है। सप्तमी की रात को देवी कालरात्रि की पूजा होती है। रॉयल ब्लू रंग है इस दिन का। डार्क स्किन और तेज सुलगती आंखों वाली माँ कालरात्रि अपने भक्तों को हानि से बचाती है। अष्टमी के दिन महागौरी माता की पूजा होती है। बुद्धि और शांति का प्रतीक है महागौरी। पिंक कलर है इस दिन का रंग, जो ऑप्टिमिज्म को दर्शाता है। पुष्पांजलि और कन्या पूजा भी की जाती है। चलिए अब सुनते हैं फिल्म आशा का यह जय माता दी गीत। और तेज सुलगती आंखों वाली माँ कालरात्रि अपने भक्तों को हानि से बचाती है। अष्टमी के दिन महागौरी माता की पूजा होती है। बुद्धि और शांति का प्रतीक है महागौरी। पिंक कलर है इस दिन का रंग, जो ऑप्टिमिज्म को दर्शाता है। पुष्पांजलि और

नवमी की रात माता सिद्धिदात्री को पूजा जाता है। वे कमल पर विराजमान होती हैं और भक्तों को सिद्धियां प्रदान करती हैं। 8 तरह की सिद्धियां देती हैं माता सिद्धिदात्री। पहला है अनिमा, जिसमें शरीर को एटम्स से जितना सूक्ष्म बनाया जा सकता है। अगला है महिमा, जिसमें शरीर को भीमकाय बनाया जा सकता है। गरिमा, जिसमें शरीर को वजनदार बनाया जा सकता है। लघिमा, जिसमें शरीर को हवा से भी कम वजनदार बनाया जा सकता है। प्राप्ति, जिससे हम अपनी इच्छाओं की पहचान कर सके। प्रकाम्य, वह सिद्धि है जिससे संसार के किसी भी जगह को प्राप्त कर सकता है। इसित्व से प्राकृतिक शक्तियों और सांसारिक चीजों पर नियंत्रण होता है। और आखिरी सिद्धि है वसित्व, जो कि लोगों पर प्रभाव डालने वाली सिद्धि है। इस दिन आयुध पूजा भी की जाती है। इन 9 रात्रियों के बाद आता है विजयदशमी का दिन, दुर्गा पूजा का अंत, महिषासुर का खात्मा, श्री राम जी द्वारा रावण का खात्मा, यह सब इस दिन के खासियत है। चलिए अब सुनते हैं लवयात्री फिल्म का यह गरबा गीत।

आशा है आज का यह प्रसारण और नवरात्रि की जानकारी आपको पसंद आई होगी। आज के गीत भी आपका मनोरंजन करने में सफल रहे होंगे, ऐसी मेरी आशा है। आज का यह एक घंटा मेरे साथ बिताने के लिए आप सभी का बहुत शुक्रिया। इस महीने के सभी जन्मदिन वाले और एनिवर्सरीज वाले श्रोताओं को हार्दिक शुभकामनाएं। नवरात्रि, दशहरा, दिवाली और आने वाले सभी पर्वों के लिए आप सभी को शुभकामनाएं। आज का कार्यक्रम समाप्त करने का समय हो चला है। अगले महीने फिर मुलाकात होगी। आप सभी अपना और अपने प्रियजनों का ख्याल रखें, हमेशा मुस्कुराएं और खुश रहें। अब मैं आपकी आरजे सीमा श्री कुमार अब आपसे विदा लेती हूँ। सीमा नाउ साइनिंग ऑफ। नमस्कार।